0: कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है।
1: मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना।